0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

भोली को ठूलो संपत्ति NMB कैपिटल को वेबसाइट व नजिकैको NMB बैंक को शाखा में गई आज SIP शुरू गर्नुहोस्। ऑटो डेबिट सुविधा भएको NMB कैपिटल SIP पैसा बढ़ने स्मार्ट तरीका। एसआईपी मार्फत म्यूचुअल फंड में लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले योजना को विवरण अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुहोला।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: इस प्रकार ने भगवान प्रभु परमात्मा स्वरूप का ब्रह्मा जी ने संपूर्ण क्रियाकलाप करे रहे। भगवती जगत जननी जो जगत के आधार हुनुहुन्छ, महाकाली स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, मणि दीपमा रमण करने वाला भगवती को स्तुति वंदना गरिसकेपछि भगवती जगत जननी माता ब्रह्मा को अगल तीर प्रादुर्भाव हुनुभयो। दुर्गा भगवती को
1: जय हो।
0: इस प्रकार ने भगवान प्रभु परमात्मा को अगल तीर आज नारायण को आगे द्वारा तपस्या करिएका ब्रह्मा जी को अगल तीर दुर्गा जगत जननी माता प्रादुर्भाव भइसकेपछि

0: बस रहा शिव जी को
1: जय जय हो।
0: जगत जननी माता दुर्गा भगवती को ये तो प्रकार ने दक्ष प्रजापति ने चिंतन करी सके पची भगवती जगत जननी माता जो संसार के कल्याण करने वाली हुनुहुन्छ उन भगवती दक्ष प्रजापति नाम करे को प्रजापति का उपमा